0: Cheers.
1: Hello?
2: Hi, Sam.
1: Who's speaking?
2: Jimmy's manager. कुछ म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं। शो की तैयारी हो रही होगी।
1: Bastard!
2: अपने को मत थकाओ, क्योंकि तुम्हारा होने वाला प्रोग्राम मैंने खरीद लिया है, और डेविड ब्राउन के किसी प्रोग्राम में तुम जैसा थर्ड ग्रेड आदमी हिस्सा नहीं ले सकता। उस प्रोग्राम में तुम्हारी जगह जिमी हिस्सा लेगा, समझे?
1: You bloody son of a gun! मैं तुम पर अपनी इज्जत और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दूंगा।
2: जरूर करना, लेकिन जब तुम हतक इज्जत का दावा करोगे तो मेरा वकील तुमसे पूछेगा कि कैसी इज्जत। अब रही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर करूंगा, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे।
1: You can't do this to me! You can't do this to me! I'm a superstar! I'm a superstar!
2: See you!
1: God, David Brown, तुम मुझे तबाह करना चाहते हो? मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारे उस आर्टिस्ट को भी देख लूंगा।